चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबू न झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्ब को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन बनंता, चीत आवे ता सब रंग माने। चीत आवे ता चूकी काने, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया। चीत आवे सद कीर्तन करता मन।

मूर्ख दुष्ट सब शह किए हर नाम उचारा तिन आगे कोई ना ठहरे हो तिन आगे कोई

सब धरती हलचल पाई छाडे घरवार इं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसार कह बिन सतगुरु को नहीं पहले तनहारा गह ऐसे खड़क

एक शायर ने बड़ी सुंदर बात आखी है। ओ आंदे ने सरे जलसा गोविंद ने तकरीर फरमाई, ये वो एक तकरीर थी जिसमें इनकलाबों की थी अंगड़ाई। गुरुजी ने कहा है दे गुलामी रह नहीं सकता, मुजालम के थपेड़े ये वतन अब सह नहीं सकता। यहाँ है जात के झगड़े, यहाँ मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए।

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चींबा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

कमाल दिया गल्लां कही कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन नै लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हिरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनिया कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हिरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

सिंह पुजारी अहे सोभी पूजा बोत न गहे। अरे आखो सतनाम कहते हदों वध पूजा ना लवे हदों वध माया ना लवे ये बड़ी सोझी की गल जे जी गौर करो। जे कोई सिंह पुजारी अहे सोभी पूजा बोत न गहे किन्नी क लवे जी।

कहिंदे कोई दिन संगरांद है कोई होर है गुरपुरब है तिन में कछ प्रसाद बनावे कर कड़ा खालसे खुआवे आखो सतनाम अगों बड़ी प्यारी गल कही दी वह कह के मैं समाप्ति करना तुसी भी कई बारी घर च संगत आवे या खंड पाठ होवे प्रसाद बनाउंदे हो ते महाराज ने दस्या प्रसाद भी किवें बनाउणा है।

तीन चीजा इको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा इको जिया इनू तिरपावल की दे कहते हैं।

प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी।

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारिया नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

अक्षर अमृत जांका नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दियो दे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे होए पंछी भी उस दरखत ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त दा नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख मानते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना

हाँ ते बलहारी ना। पहली गल साहिब एक सफल रुख है पर इदा नाम है अमृत जिन पिया ते त्रिपत पाए ए नाम रूपी अमृत जिन पीता ओ त्रिपत हो गया क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं दुनिया दे पदार्थां विच सुख नहीं एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई होर चीज चाहिए दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं पर साहब जी कह रहे ने जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पी लिया नाम जप लिया उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है ते जिन्ना ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हौं तिन बलिहारे जां।

दिवस है अभियानार शब्द जदों या पासों ही ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर भटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे दे नाल वसदा है। ओदी निगाह तों कोई दूर नहीं हो सकता।

देखा दिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पा कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी ओदे नाम रूपी अम

जा सिफत करी अरदास। कई लोग कहंदे ने जदों भी पाठ करन बैठिए, भजन करन वास्ते बैठिए, मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार नहीं, मन दी पटकना ताही खत्म हो सकती है। मन दे परम

文家，खनिए वंजा तौ साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान कर दे हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए।

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बावा फड़ लिया कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताँ कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिदे हिरदे विच प्यार नहीं जिदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसे गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषों के जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोगों नू प्यार देंगे तो फिर स्वर्ग लभण की लोड़ नहीं। ये दुनिया ही

आलू होए मेरा स्वामी किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नाबिक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जन नाबिक धूड़ मंगे

ये पहली विशेषता ही गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दिहाड़ा ते है पर बरसी नहीं, ना वो मरता ना हम डरिया, ना वो मरे ना होवे देंदा रहे। गुण एहो और ना ही ना को हो ना को हो गज की आखो ना कोई एहो जा होया ना होए। गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगे हो ये 400 साल है ये प्रकरण महाराज जी ले लेने से पहली विशेषता ही जिन्ने अवतार आए गए गुरु नानक गया नहीं गुरु ग्रंथ साहब दे शब्द रूप सदा ली धरती ते टिक गए। दूजी विशेषता ही पांच मिनट च बोल के समाप्ति दूजी विशेषता ही धरती ते जिन्ने ग्रंथ ने ध्यान देना सारे सत्कार योग ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की दूजी विशेषता ही धरती ते जिन्ने ग्रंथ ने रब की गल करते ने ध्यान देना श्री गुरु ग्रंथ साहब रब नाल गल्लां कराउंदा है थोड़ा जरा बरीकी जान रब की गल करनी हो रही रब नाल गल करनी डूंगी चुभी है बाकी जिन्हें ग्रंथ है ना करी अध्ययन करे वो पढ़े रब की गल होगी पर गुरु ग्रंथ साहब विच रब नाल गल्लां कराइयां हैं ये हुण तुसीं चुभी मारो ते कदी नोट करो ये शब्द तुसीं पढ़ रहे हो ना मिल मेरे प्रीतमा जीओ ते कदी डूंगी चुभी मारो रब नाल गल्लां करो विशेषता ही जिन्नी बाणी है जिथे रब दी गल है उथे रब नाल गल्लां कराइयां सानू गल्लां जे तुसी शब्द बोल रहे हो दर्श तेरे की प्यास मन लागी रब नाल गल्लां हो रही जे शब्द बोल रहे हो मन बैराग भरिया दर्शन नहीं कह चाहो रब दी गल नहीं रब नाल गल्लां हो रही जरा पंक्ति बोलियो प्यार नाल थानू महसूस होएगा कि वाग्य अंतर रब दी गल करनी कुछ हो रे रब नाल गल करनी कोई यह दूजी विशेषता ही गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी।

महूर्त देख के कर दे। घर बनाना हो घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना हो या कोई ब्याह हो, कोई भी खुशी का काम हो, इंसान सारिया तो पहला दिन देखद, तारीख देखद, महीना देखद, साल देखद, मुहूर्त देखद। ये काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवा, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने, ऐ इंसान तू हर काम महूर्त ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगे तू कोई महूर्त ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने, ऐ इंसान हर काम तू महूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए महूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन दिता, ना तरीक देखन दिती, ना कोई महीना देखन दिता। बस इना ही पता लगा, चंगा भला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नु मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारू डीकदे पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं, हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया, मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने, बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाव भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

फराज मिलक जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते नी तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा साहब जी बाणी विच बयान करदे नी ओ पत्नी किवें जीवन बतावे जिदा पति एक वरी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नूं भुला देने हैं, पर मौत इंसान नूं कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके लै जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नूं समझिया, अपने आप नूं फिर कहण लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा

पर मैं क्यों सोवां हाली ते आस से तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है पर तू ता विचे साथ छड़ गया तू नहीं ता साहब जी कहते ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगता है ते ओ मां जिदा पुत ना रवे ओदा जीवन कैसा कहते ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है तू हिंदुस्तान दा बादशाह जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद कर दी सलाम कर दी तुसी क्यों रोंदे अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही कहन लगा बादशाह कहन वाले शहनशाह कहन वाले ता बहुत ने पर इको ही सी मेरी मां जेड़ी क्या कर दी सी वे अकबरा हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है ओ दुनिया दी

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ही चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितदा है, तरक्कियां करदा है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ए भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोटे कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।